0: टाइम चेक। यति बेला रातिको 8 बज्यो।
1: गुड न्यूज एफएम 105.1।
0: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम पिताको इच्छा।